0: जब दिन थे, समय था, शक्ति थी, तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा रहा, अब तो विदाई का वक्त आ गया, मौत मजबूत है, किसी भी क्षण यात्रा शुरू हो जाएगी। अब वक्त नहीं है कि गालियों के जवाब गालियों से दिए जाएं, कांटों के जवाब कांटों से दिए जाएं, ईंटों के जवाब पत्थरों से दिए जाएं, अब वक्त नहीं है, अब मौत करीब आ गई। ऐसे तो जिंदगी राग रंग में बिता दी, परमात्मा को न कमा पाया, अब इन आखिरी क्षणों को व्यर्थ के लेन देन के उलझाव में मत लगा। कोई गाली दे, कोई मारे, तू पैर चूम के अपने घर आ जा।
1: भक्तपुरी FM 105.4 MHz सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण आत्मीय श्रोतालाई जीवन दर्शन कार्यक्रम प्रभात फेरीमा हार्दिक स्वागत छ। ओशो भन्नुहुन्छ, प्रेम र ध्यान दुबई यौन ऊर्जाको रूपान्तरण हो। प्रेम साक्षी भाव, ध्यान र मैत्री भावको सन्देशद्वारा तपाईँको रूपान्तरणको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने उनै धार्मिक व्यक्ति ओशो रजनीशले दिनुभएको विचारोत्तेजक प्रवचन अब प्रस्तुत छ।
2: मनुष्य चेतना के दो आयाम हैं, एक मूर्छा एक अमूर्छा। मूर्छा का अर्थ है सोए सोए जीना, बिना होश के जीना। अमूर्छा का अर्थ है होश पूर्वक जीना, जागृत विवेकपूर्ण। मूर्छा का अर्थ है भीतर का दिया बुझा है, अमूर्छा का अर्थ है भीतर का दिया जला है। मूर्छा में रोशनी बाहर होती है, बाहर की रोशनी से ही आदमी चलता है, जहां इंद्रियां ले जाती हैं वहीं जाता है। इंद्रियों की कामना ही खुद की कामना बन जाती है, क्योंकि खुद का कोई पता ही नहीं। मन जो सुझा देता है वही जीवन की शैली हो जाती, क्योंकि अपने स्वरूप का तो कोई बोध नहीं। लोग जो समझा देते हैं, समाज जो बता देता है, वही आदमी चल पड़ता है, क्योंकि न तो अपनी कोई जड़ें होती हैं अस्तित्व में, न अपना भान होता है। मैं कौन हूं इसका कोई पता ही नहीं। तो जीवन ऐसे होता है जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता है, जहां लहरें ले जाती चला जाता है, जहां धक्के हवा के पहुंचा देते हैं वहीं पहुंच जाता है। अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, निजता नहीं, जीवन एक भटकन। निश्चित ही ऐसी भटकन में कभी मंजिल नहीं आ सकती, क्योंकि मंजिल तो सुविचारित कदमों से पूरी करनी पड़ती। भटकाव बहुत हो सकता है, यात्रा नहीं हो सकती। यात्रा का तो अर्थ है कि तुम्हें पता हो तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। होश पूर्वक ही यात्रा हो सकती है, होश पूर्वक ही तीर्थ यात्रा हो सकती। इसलिए ज्ञानियों ने होश को ही तीर्थ कहा है। अमूर्छित चित्त, जागा हुआ चित्त बिल्कुल दूसरे ही ढंग से जीता है। उसके जीवन की व्यवस्था आमूल रूप से भिन्न होती है। वो दूसरों के कारण नहीं चलता, वो अपने कारण चलता है। वो सुनता सबकी है, वो मानता भीतर की है, वो गुलाम नहीं होता। भीतर की मुक्ति को ही जीवन में उतारता है। कितनी ही अड़चन हो लेकिन उस मार्ग पर ही यात्रा करता है जो पहुंचाएगा, और कितनी ही सुविधा हो उस मार्ग पर नहीं जाता जो कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस सुविधा का क्या अर्थ। मार्ग कितना ही सुंदर हो, कंटका कीन ना हो, चोर लुटेरे ना हो मार्ग पर, सब सुरक्षा हो, सुविधा हो, लेकिन अगर मार्ग कहीं पहुंचाता ही ना हो तो उस मार्ग की सुविधा और सौंदर्य का क्या करिएगा। मार्ग कंटका कीन हो, राह लुटेरों से भरी हो, जंगली जानवरों का भय हो, लेकिन कहीं पहुंचाता हो तो जाने योग्य। अमूर्छित व्यक्ति का जीवन भटकाव नहीं, एक सुनियोजित यात्रा है, लेकिन वो नियोजन कौन देगा? समाज उस नियोजन को नहीं दे सकता। समाज तो अंधों की भीड़ है, वो तो मूर्छित लोगों का समूह है। अगर तुमने समाज की सुनी तो तुम अंधेरे में ही भटकते रहोगे। भीड़ तो बोधपूर्ण नहीं हो भी नहीं सकती। कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति अनेकों में बोध को उपलब्ध होता है। तो भीड़ तो बुद्धों की नहीं है। अमूर्छित व्यक्ति अपने भीतर अपने जीवन की विधि खोजता है, अपने होश में अपने आचरण को खोजता है, अपने अंतःकरण के प्रकाश से चलता है। कितना ही थोड़ा हो अंतःकरण का प्रकाश, सदा पर्याप्त है। इतना थोड़ा हो कि एक ही कदम पड़ता हो तो भी काफी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी दो कदम तो एक साथ चलता नहीं। छोटा से छोटा दिया भी इतना तो दिखा ही देता है कि एक कदम साफ हो जाए। एक कदम चल लो फिर और एक कदम दिखाई पड़ जाता है। कदम कदम करके हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। अमूर्छित व्यक्ति विद्रोही होता है। अमूर्छित व्यक्ति एक एक क्षण, पल पल एक ही बात को साधता है, और वो बात यह है कि कुछ भी मुझसे ऐसा ना हो पाए जो मूर्छा को बढ़ाए, मूर्छा को गहन करे। ध्यान रखना, एक एक बूंद पानी की गिरती है, चट्टानें टूट जाती है। एक एक बूंद होश की गिरती है और तुम्हारी जन्मों जन्मों की चट्टान हो, मूर्छा की निद्रा की, टूट जाती है। लेकिन एक एक बूंद गिरनी चाहिए। तो प्रतिपल अमूर्छित व्यक्ति की चेष्टा यही होती कि हर क्षण का उपयोग एक ही संपदा को पाने में कर लिया जाए, वो ये कि मेरे भीतर का विवेक प्रगाढ़ हो, जागे। मूर्छित चित्त की तीन अवस्थाएं जिन्हें हम जानते हैं। एक जिसे हम जागृत कहते हैं, जो कि शब्द उचित नहीं, क्योंकि मूर्छित व्यक्ति जागेगा कैसे? उसका जागरण नाम मात्र का जागरण है, कहने भर का जागरण है। सुबह सूरज उगता है, पशु पक्षी जागाते हैं, पौधे जागाते हैं, तुम भी जागाते हो। क्या पशु पक्षी जागृत है? क्या पौधे जागृत है? तुम भी नहीं हो। सिर्फ शरीर का विश्राम पूरा हो गया, इसलिए तुम उठते हो, चलते हो, बैठते हो, ऐसा लगता है जैसे जागे हो, लेकिन ये सिर्फ लगना मात्र है। इसका वास्तविक जागरण से कोई दूर का भी संबंध मुश्किल से बनता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ग्रामीण परिचित ने, किसान ने, गांव से एक मुर्गी भेज दी भेंट में। जो आदमी लेके मुर्गी आया था, स्वभावतः नसरुद्दीन ने उसका काफी स्वागत किया, मुर्गी का शोरबा बनवाया, उसे शोरबा पिलाया। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने जाके गांव में खबर कर दी कि आदमी बहुत अच्छा है और अतिथि को तो बिल्कुल देवता मानता है। फिर तो गांव से लोगों का आना शुरू हो गया। दूसरे दिन ही दूसरा आदमी मौजूद हो गया। नसरुद्दीन ने पूछा, आप कौन? उसने कहा कि जिसने मुर्गी भेजी थी उसका दूर का रिश्तेदार। उस उसका भी नसरुद्दीन ने स्वागत किया। घर आया आदमी, फिर कितनी दूर का रिश्तेदार हो, रिश्तेदार ही है उसी का जिसने मुर्गी भेजी थी। लेकिन फिर बात सीमा के बाहर होने लगी, रिश्तेदारों के रिश्तेदार आने लगे, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के मित्र आने लगे, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के मित्रों के मित्र आने लगे। पत्नी बेचैन हो गई, उसने कहा ये मुर्गी तो एक अपशगुन सिद्ध हुई, हम इसे इंकार ही कर देते, ये तो पूरा गांव चला आ रहा है। नसुद्दीन ने बहुत सोचा, कुछ करना ही पड़ेगा। और दूसरे दिन सुबह फिर एक आदमी खड़ा है, आप कौन? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदारों के मित्रों का मित्र। नसुद्दीन ने कहा ये स्वागत है। लेकिन वो आदमी बड़ा हैरान हुआ जब भोजन उसे कराया गया तो सिर्फ कुनकुना पानी था सोरबे के नाम पर। उस आदमी ने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन मैंने बड़ी चर्चा सुनी थी आपके आतिथ्य की और ये तो कुनकुना पानी है। नसुद्दीन ने कहा माफ करिए, कुनकुना पानी नहीं, मुर्गी के सोरबे का, सोरबे का, सोरबे का सोरबा है। आपकी जागृति उस मुर्गी के सोरबे का, सोरबे का, सोरबे का सोरबा है। अगर बुद्ध की जागृति जागृति है तो आपकी जागृति रिश्तेदारों के मित्रों का मित्र। बहुत लंबा फासला है। बुद्ध को हमने कृत कहा है, बुद्ध शब्द का, जो जाग गया, जो होश से भर गया। अगर बुद्ध मापदंड हो जागरण के तो तुम्हारा जागरण क्या होगा? एक खोटा सिक्का जो सिक्के जैसा लगता है लेकिन सिक्का है नहीं। एक झूठ जो सत्य का दावा करती है लेकिन सत्य है नहीं। एक मुर्दा लाश जो ठीक जीवित आदमी जैसी ही मालूम पड़ती है, नाक नक्श बिल्कुल जीवित आदमी जैसा लेकिन भीतर कोई प्राण नहीं। एक बुझा हुआ दिया जिसमें सब है, दिया है, बाती है, तेल है, लेकिन ज्योति नहीं। मूर्छा के तीन रूप हैं, एक जिसे हम जागृति कहते हैं जो बिल्कुल खोटी है, क्योंकि जागे हुए भी तुम जागे हुए नहीं होते। जाग कर भी तुम जो करते हो वो खबर देता है कि तुम सोए हुए हो। तुमने हजार दफे तय किया है कि अब दोबारा क्रोध ना करेंगे और फिर एक आदमी अपमान कर देता है या तुम्हें लगता है अपमान कर दिया, या किसी आदमी का भीड़ में तुम्हारे पैर पर पैर पड़ जाता और एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण की देरी भी नहीं होती, क्रोध ना करेंगे। हजार बार कसमें ली है, हजार बार पछताए हो, वो सब कहां चला गया पछतावा? वो याददाश्त इतनी जल्दी कैसे खो जाती है? होश होता तो साथ रहती, बेहोशी में याददाश्त साथ कैसे रह सकती है? क्षण में आग जल उठती है, फिर वही क्रोध खड़ा है, फिर तुम पछताओगे घड़ी बर्बाद। लेकिन न तुम्हारे का कोई मूल्य है और न तुम्हारे क्रोध का कोई मूल्य है। तुम्हारा पछतावा भी झूठा है।

0: क्योंकि कितनी बार पछता चुके अब रुकते नहीं, अब रुक जाओ। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा जिंदगी भर हो गई, उसकी उम्र कोई 65 साल होगी, बस एक ही चीज मुझे कष्ट दे रही, मेरा क्रोध। इससे मेरा घर भर पीड़ित है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा जीवन एक कलह की लंबी कहानी, मगर ये क्रोध मुझसे नहीं जाता और अभी भी है, मौत करीब आई जा रही, लेकिन ये क्रोध मुझे आग की तरह कपाता रहता है। और मैंने हजारों बार पश्चाताप कर लिया, कसमें खाली मंदिरों में जाके साधुओं के चरणों में सिर रख के कि शायद उनकी कृपा का सांस मिल जाए, भगवान को साक्षी रख के मंदिरों में कसम खाली, वो भी काम नहीं आती। जब क्रोध पकड़ता है तो भगवान की सामर्थ्य भी काम नहीं आती, उस वक्त मैं सब भूल ही जाता हूं, एक क्षण को मैं होता ही नहीं। कौन आ जाता है मेरे भीतर भूत प्रेत जैसा और मैं क्या कर गुजरता हूं उसका मुझे खुद ही समझ नहीं आता। पीछे लौट के देखता हूं तो मानने का मन नहीं होता कि मैंने ऐसा किया होगा। क्या करूं? आप साक्षी हो जाएं, मुझे संकल्प करवाएं। मैंने कहा कि मैं वो भूल ना करूंगा जो दूसरों ने तुम्हारे साथ की। तुमसे मैं सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि तुम पश्चाताप का त्याग कर दो, क्रोध तो चलने दो। इतना तो कर सकते हो कि अब क्रोध आएगा तो पश्चाताप ना करेंगे। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, इसमें क्या अड़चन। उसे पता नहीं कि जो क्रोध नहीं छोड़ सकता वो पश्चाताप भी नहीं छोड़ सकता। छोड़ना तो होश की बात है। मैंने कहा तो जिस दिन पश्चाताप छूट जाए तुम आ जाना, उसी दिन क्रोध भी छुड़वा दूंगा। महीने भर बाद वो आदमी वापस आया और उसने कहा कि आपने धोखा दिया, पश्चाताप भी नहीं छूटता। नहीं, इसमें तो कोई अड़चन नहीं है, ये तो किसी शास्त्र ने तुमसे कहा नहीं, ये तो छोड़ ही सकते हो। पश्चाताप के तो विरोध में कोई भी नहीं है, क्रोध के विरोध में तो सारी दुनिया है, तुम पश्चाताप छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मेरी बात समझ में आ गई, आप क्या समझाना चाहते थे मुझे दिख गया, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, मैं हूं ही नहीं। जब तक तुम जागे नहीं हो तुम हो ही नहीं, तुम्हारा होना सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ एक ख्याल है जिसकी कोई जड़े नहीं, सिर्फ एक सपना है जिसकी कोई सार्थकता नहीं और जिसमें कोई पौद्गलिकता नहीं, जिसमें कोई पदार्थ नहीं, जिसमें कोई बल नहीं। न तुम पश्चाताप छोड़ सकते हो, न तुम क्रोध छोड़ सकते हो, करते जरूर हो। वो भी कहना ठीक नहीं है कि तुम करते हो, उचित होगा कहना कि वो भी होता है, तुम यंत्रवत हो, नहीं तो छोड़ देते। जिस काम को तुम करते हो उसे तुम छोड़ सकते हो, ये नियम है। जिस काम को तुम करते ही नहीं उसको तुम छोड़ोगे कैसे? जो होता है उसको तुम कैसे छोड़ोगे? बटन दबाते हो बिजली का बल्ब जल जाता है, क्या बिजली के बल्ब के हाथ में ये बात है कि वो न जले, या जब चाहे तब जले, या जब उसका भाव ना हो तो कह दे अभी विश्राम कर रहा हूं? नहीं, बटन दबती है तो बिजली का बल्ब जल जाता है। शायद बिजली का बल्ब भी अपने भीतर सोचता होगा कि मैं जलता हूं, मैं बुझता हूं, वो गलती में है। तुम भी बुझते नहीं, जलते नहीं। एक आदमी ने गाली दी, बटन दबा दी, जल गए। एक आदमी आया, कहने लगा कैसे देव पुरुष हो आप, प्रसन्न हो गए। एक आदमी ने कहा कैसी सुंदर मूर्ति, और भीतर फूल खिल गए। और एक आदमी ने कह दिया कि जरा देखो भी तो अपना चेहरा दर्पण, ऐसी बेहूदी शक्ल कहीं नहीं देखी कि आग लग गई। बटने हैं, तुम नहीं हो। बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे कुछ शिक्षा दें, मैं संसार की सेवा करना चाहता। बुद्ध उदास हो गए। वो आदमी कहने लगा आप उदास क्यों हो गए? बुद्ध ने कहा उदास इसलिए हो गया हूं कि तुम अभी हो ही नहीं, संसार की सेवा कौन करेगा, और तुम सेवा के नाम से दूसरों को सताने लगोगे। तुम कृपा करो, तुम पहले अपनी सेवा कर लो, पहले तुम हो तो जाओ। गुरुजी पश्चिम का एक बहुत बड़ा रहस्यवादी संत, इस सदी का, कहता था कि आत्मा सभी के भीतर नहीं, उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। कहती आत्मा तो उन्हीं के भीतर है जो जागे हुए, बाकी तो सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं, बाकी तो सब पदार्थ हैं, उनके भीतर भी आत्मा का कोई आविर्भाव नहीं हुआ है। उसकी बात में सच्चाई है, क्योंकि आत्मवान होने का एक ही अर्थ होता है कि तुम अपने मालिक हुए, अब तुम जो चाहो वही होगा। तुम हवा में कपते हुए पत्ते नहीं हो कि जब झोंका आएगा तब कपोगे और जब झोंका ना आएगा तो लाख चाहो तो ना कप सकोगे। अब तुम यंत्रवत नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का अर्थ है कि अब तुम्हारे भीतर से निकलेंगे तुम्हारे कृत्य, बाहर की घटनाओं से पैदा ना होंगे। परिस्थितियां नहीं, अब तुम मूल्यवान हो, तभी तो तुम आत्मवान होगे, अन्यथा आत्मा है ये केवल सिद्धांत है। कभी कभी किसी व्यक्ति में आत्मा होती है, तुम में आत्मा ऐसी ही है जैसे बीज में वृक्ष है, हुआ न हुआ बराबर है, हो सकता है लेकिन है नहीं। और हो सकना और होने में बड़ा फर्क है, वो केवल संभावना है बीज की कि अगर ठीक समुचित भूमि मिले, समुचित खाद मिले, समुचित सुरक्षा मिले, समुचित जल, समुचित सूर्य की किरणें मिले, सुरक्षा मिले, तो संभावना है कि बीज वृक्ष हो सकेगा, लेकिन बहुत सी शर्तें पूरी हों तब, अन्यथा बीज बीज की तरह ही मर जाएगा और वृक्ष न हो सकेगा। अधिकतम लोग शरीर की तरह ही जीते हैं और शरीर की तरह ही मर जाते हैं, बीज उनका ऐसे ही खो जाता है, अवसर आता है और चला जाता है। आत्मवान होने का अर्थ है होश, विवेक, जागृति, तुम्हारे कृत्य तुम्हारे भीतर से निकलने लगे। अभी तुम्हारे कर्म कर्म नहीं है, प्रतिकर्म है। प्रतिकर्म यानी रिएक्शन, कोई कुछ करता है उसके प्रतिक्रिया में तुम्हारे भीतर कुछ होता है। अगर कोई प्रेम करता है तो तुम प्रेम करते हो, और कोई घृणा करता है तो तुम घृणा करते हो। जीसस का वचन है शत्रु को भी प्रेम करो, इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई नीति की शिक्षा नहीं है। जीसस जैसे व्यक्तियों को नीति में क्या उत्सुकता है, ये धर्म का गहनतम सूत्र है। जीसस कहते हैं शत्रु को प्रेम करो, वो ये कह रहे हैं मित्र को तो प्रेम करना प्रतिक्रिया है, वो तो सभी करते हैं। शत्रु को घृणा करना भी प्रतिक्रिया है, वो तो सभी करते हैं। जिसने शत्रु को प्रेम कर लिया वो मालिक हो गया, उसने प्रतिक्रिया तोड़ दी, वो अपने कर्म का खुद मालिक हो गया। शत्रु तो पूरी चेष्टा कर रहा है कि तुम उसे घृणा करो, लेकिन तुमने उसकी चेष्टा तोड़ दी। वो तो बटन दबा रहा था तुम्हारे क्रोध की, लेकिन तुमने प्रेम का प्रवाह पैदा कर दिया। अगर तुम अपने शत्रु को प्रेम कर पाओ तो तत्क्षण तुम यंत्रवत्ता से मुक्त हो गए, तब तुम्हारे प्रतिकर्म खो गए, अब तुम कर्मवान हुए। और ये बड़े मजे की बात है, प्रतिकर्म बांधते हैं, कर्म नहीं बांधता। असल में प्रतिकर्मों से ही कर्मों की श्रृंखला बनती है। जब कोई व्यक्ति होश पूर्वक कर्म करता है तो उससे कोई बंधन पैदा नहीं होता। तुमने कभी जीवन में कोई कर्म होश पूर्वक किया है? होश पूर्वक करने का अर्थ है तुम्हारे शरीर का यंत्र जो करना चाहता हो वो नहीं, तुम्हारे भीतर का होश जो करना चाहता हो वही तुमने कभी किया है। शरीर कहता था करो क्रोध, मन कहता था करो क्रोध, मन में तो गाली उठाई थी, शरीर ने डंडा उठा लिया था। कभी ऐसा हुआ है कि डंडा हाथ में रह गया हो, गाली मन में रह गई हो और तुम अछूते अस्पर्शित भीतर खड़े रहे, तुम्हारी ज्योति पर छांव भी न पड़ी इस डंडे की, तुम्हारी ज्योति पर गाली का दंश भी न आया, तुम्हारी ज्योति निष्कलुष बनी रही, कमलवत, पानी छुआ ही नहीं। अगर ऐसा तुमने कभी किया है तो तुम्हें पहली दफा पता चलेगा कि अमूर्छा क्या है, जागृति क्या है, होश क्या है। उसी क्षण तुम परम आनंद से भर जाओगे, तुम मुक्त हो गए।
1: ओशो को संदेश, कुनी सिद्धांत कुनी चिंतन होइन। उहाँको सन्देश हो तपाईँको रूपान्तरण एउटा विज्ञान हो। उनी महान धार्मिक व्यक्ति बुद्ध पुरुष ओशोले दिनुभएको देशनालाई प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति सप्रेम आभार व्यक्त गर्दै प्रभात फेरीबाट आजको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यस धरतीमा जति पनि प्राणी सबैको मंगल होस्, चित्त निर्मल होस्, रोगमुक्त होस्। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।

0: आर अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

क्यान्सरिया फुक्क उपचार विराटनगरे उपलब्ध दु दक्षुन कथोया क्यान्सरिया उपचार विधि शल्यक्रिया रेडिएसन नापङ न्युक्लियर मेडिसिन सेवानङ उपलब्ध दु नेपाया दक्को थ्यानङ क्यान्सरिया उपचार या निम्ति यदि एयरलाइन्स मार्फत निशुल्क वेगु वानिगु टिकट या व्यवस्था दु उपचार या लागि पिया चुनी मागु मधु विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल अन्तर्गत नेपाया नम्बर एक क्यान्सर अस्पताल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर थप जानकारी या निम्ति स्वाकुल्याप 9761000250

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

0: कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: आर अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छा नौलो छ सरगम आज को ही

तिन्द्रक्राब थक्राबु क्राला ए क्राजी विषम ए रन्धन आज बचाला थेतासी मेघो मेघो

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम। स्टार अन भक्तपुर एफएम।
1: नौलो नौलो बतास छ, नौलो छ सरगम आज कोही।

0: नङ क्यान्सर या उपचार या निम्ति यदि एयरलाइन्स मार्फत निशुल्क वेगु वानिगु टिकट या व्यवस्था दु उपचार या लागि पिया चुने मागु मधु विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल अन्तर्गत नेपाया नम्बर एक क्यान्सर अस्पताल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर थप जानकारी या निम्ति सपुल्याप 9761002530
1: FM 105.4 MHz

0: 84147। शर्तहरू लागू हुनेछन्।
1: क्यान्सर या फुक्को उपचार विराटनगरै उपलब्ध दु दक्षिण कथैया क्यान्सर या उपचार विधि शल्यक्रिया रेडिएसन नापङ न्युक्लियर मेडिसिन सेवानङ उपलब्ध दु नेपाया दको थ्यानङ क्यान्सर या उपचार या निम्ति यदि एयरलाइन्स मार्फत निशुल्क वेगु वानिगु टिकट या व्यवस्था दु उपचार या लागि पिया चुने मागु मधु विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल अन्तर्गत नेपाया नम्बर एक क्यान्सर अस्पताल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारी या निम्ति स्वपुल एप 97160025300।
2: This is Bhaktapur FM 105.4 MHz।

0: स्टार अन भक्तपुर एफएम स्टार अन भक्तपुर एफएम
1: नौलो नौलो बतास छ नौलो छ सरगम आज को ही।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुम

कांटे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

चाका नी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।